हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: Ek mazboot Pakistan ki buniyad hamare sehatmand bacche hain. Polio bachchon mein umar bhar ki mazoori ka sabab ban sakta hai, magar isse bachao mumkin hai. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे रखी करो लई।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे. त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी. पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
3: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: चाहत से पता करते हैं
1: लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर लिसनिंग टू जी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सूर से हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं सिंध की गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है, सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक।
2: ये माना के आंखों में आंसू हैं, दिलों में बसे।
1: प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग भी इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अलर्ट द नेवर। अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजली खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा।

आगे के प्रोग्राम में बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि हम मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना इंक्लूड करने जा रही हूँ बाय कुक स्टूडियो सीजन 9 निर्मल रॉय एंड जबर अब्बास। सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
2: शहर सजो मना सागों तूफान इश्का तूफान सजो शहर तंगा
3: ओके
2: अच तो हलो टक्कर अड़े तरीके से जामिन हले हले जो को भी मिड़े असधाए जो बल्कि मासा बाहर आन
3: ओके जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज। 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स डेली कॉलर्स सेम नॉट अलाउड ठीक है। भाई को हमने इसीलिए मौका दिया कि एक तो उनकी कल कॉल कट गई थी, दूसरा जब उन्होंने दोबारा कॉल की तो उन्होंने शिकायतों के इतने पुल लगा दिए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं भाई की कॉल। लेकिन इसके अलावा हम जो कॉल्स लेंगे वो डिफरेंट लेंगे। अगर आपने कॉल की तो आपकी कॉल ड्रॉप कर दी जाएगी, अगर तो आपने कल कॉल की है तब ठीक है। तो ये रूल उन लोगों के लिए है जो कि डेली कॉल करेंगे या करते हैं, तो जिन लोगों ने कल कॉल की है वो आज अगर कॉल करते हैं तो उनकी कॉल ड्रॉप कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओके कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। पहले तो वो कॉल कर रहे
4: हैं।
3: अरे वाह क्या बात है जी, क्या
4: तो आप एक नंबर जो इतना तेज बताते हैं, क्या बोलती है
3: नंबर बहुत स्पीड में बताती हूँ। चले अब मैं आहिस्ता बताया करूँगी ठीक है।
4: ऐसे बताया करो तो समझ में आए ना, यहाँ पे जब मेरी बीवी साथ देती है उसको भी समझ में नहीं लग रहा है।
3: क्या नहीं लग रहा था?
4: मेरी बीवी पास में खेती हुई थी, इसको मैं बोल रहा था कि नंबर नोट करना जब बाजी बताए तो वो नोट नहीं कर पा रही थी।
3: अच्छा चले कॉल लग गई आपकी। कब से ट्राई कर रहे हैं आप, कितने दिन हो गए ट्राई करते हुए?
4: बाजी तकरीबन 4-5 दिन हो गए मैं नंबर नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट नहीं कर पा रहा।
3: अरे ये तो बड़ी ज्यादती कर रही हूँ मैं।
4: बाजी इतनी तेज बता रही हूँ।
3: चले मैं आहिस्ता आहिस्ता बताया करूँगी। अच्छा गाना सुनाएंगे आप?
4: जी शमन अली किरारी का गाना है। वही जो दिल आए दिल नदी न करे ये।
3: इसका टाइटल बताइएगा।
4: वही जो दिल आए दिल नदी न करे,
3: दिल
4: नदी न करे
3: लगी न करे। ओके शमन का
4: जी, शमन अली किरारी का।
3: ओके किसी को डेडिकेट करना है?
4: मैं अपनी बेगम को कर रहा हूँ, मेरे साथ में देखेंगे।
3: अरे वाह क्या बात है जी, भाभी को हम गाना डेडिकेट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और भाई का गाना हम प्ले करेंगे और गाना जो हमने सर्च किया है भाई ने जो कहा है, मेरे ख्याल से ये जो आ रहा है ना ये वो है नहीं।

ओके जी गाना प्ले कर रहे हैं और मैंने सर्च करने की कोशिश की है बट मेरे ख्याल से ये वो टाइटल के हिसाब से अलग है वही सॉन्ग हो. सो हम प्ले करते हैं जी शमन का ये वाला गाना और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हाफिज लखमीर मोरो से बात कर रहे हैं। कैसे भाई, ठीक ठाक?
1: जी क्या कह रहे हैं?
0: जी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: ओके तो हाँ, क्या सुनाएंगे?
1: मेरा एक कर्ज है और पूरा करोगे तो बड़ी गैर बड़ी होगी।
0: हाँ जी बोले।
1: नाथ सुना होगा तो बारह रबी लगल क्या थे सबको? नाथ
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: हरे मामी नू नाच रख दे इन्हा बकरिया नू पावांगी मैं जाला। हरे मामी

0: ਤੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਰੱਖ ਦੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ ਜੀ।
1: ओके जी, वेरी नाइस। और इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे?
2: हमारे दोस्त हाफिज सावन साहब और हाफिज पावलंगुर साहब, सरदार और मुस्कान और स्टूडेंट सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने जाते हैं और वापस आते हैं स्टेज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: जीए एफएम 91.6।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।

अमेरिका के ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाव सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त वाशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मुक़ाइमत ते अमल करणु घुर्जे। अमेरिका खे ईरान सां मुस्बत अगबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।

अमेरिका ईरान खिलाफ़ नए मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राब्ता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राब्ता ख़त्म करे छॾींदो। अमेरिकी दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंदि नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। आबना हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे, लंग मां तेल जी रस्म जारी आहे।

0: हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जाई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने का नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज़,
4: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अगर जी आज का जो टेम्परेचर है वो कुछ इस तरीके से है कि गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गोरे गिनकर गाड़ी है, ठीक है, ये कहना है गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए, ठीक है, ये बोलेंगे। और जब आप ये बोलेंगे तो जो बंदा ज्यादा लगेगा हमारे इस सेगमेंट को तो जरूर कॉल लेंगे हम आप लोगों की। और साथ साथ हम गाने को चेंज करके एक और गाना भी प्ले कर देंगे। और मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जो मैं गाना प्ले करूँ वो बहुत अच्छा सा गाना हो, और उसी गाने के साथ जो है ना हम आप लोग की लाइव कॉल्स को एंटरटेन भी करें। और प्ले करते हैं जी फलक शब्बीर, आई गेस फलक शब्बीर एफटी डीजे शैडो, तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ कॉल्स लेंगे।

ओके जी, वेरी नाइस सॉन्ग. आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03-000-11-34-88. तो आपने कहना है कि गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए, ठीक है. तो ये बोलेंगे और ये जो बंदा ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को. अच्छा, साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी चलते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते चार. तो नो हुसैन तो नहीं.

और इसके साथ जी मैसेजेस आप लोगों के मुझे बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं। मिठड़ी रुखसार, अच्छा ये मैसेज हमें किसने किया है? आई गेस ये जो मैसेज है हमें सफदर, हाँ सफदर बलोच मोरो से हमें मैसेज कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि पत्थर दिल मोम बन जा, दिल का है ये सौदा, वफा का एक नूर बन जा, गमों से दूर ले जाऊंगा तुझे मैं तेरा आगे मिसिंग पार्ट। अच्छा आज के टंग टेस्टर गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए। अच्छा ये कुछ टेक्निकल इशू हमारे साथ कॉल्स का आ रहा है और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की कॉल्स को मैं रिसीव करूं।

और साथ साथ हम एक सॉन्ग भी प्ले करते हैं अच्छा सा, और सॉन्ग के साथ आगे चलते हैं. एंड गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा पूरा खत्म हो चुका है जी. सो हेयर कम्स द ब्यूटिफुल सॉन्ग. ये जो सॉन्ग है ये है जी सत्यन खालिद की आवाज में. इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: 101.6 उधर रहो।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुख साए आपका और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का। और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग। सो कॉल्स मुझे आना शुरू भी हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट कॉलर, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी हम बलोच भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र।
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
1: नहीं, आप इसको रिपीट कराएंगे?
0: रिपीट करूँ मैं?
1: जी आप, मैंने सुना नहीं।
0: अच्छा चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। गुलाब ने
1: गुलाबी
0: गुलाब ने गीले गमले गिनकर गाड़ दिए।
1: गुलाब ने
0: गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए।
1: गीले गमले में गुलाबी गुल गिनके गाड़ दिए।
0: चले मजा आपसे नहीं हो पाएगा, और कुछ कहेंगे?
1: नहीं बस कहीं मैं कहना चाहता हूँ को ऑन कर देना, वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि फिर कॉल लगती है तो अटेंड नहीं होती है, और अगर अटेंड होती है तो फिर वो आपको अगर आप कहेंगे शिकायत दे रहे हैं कि मुझे डबलिंग
0: अटेंड होती है तो क्या होता है?
1: डबलिंग वॉइस में अभी भी डबलिंग हो रही है, मैं अपनी वॉइस खुद सुनता हूँ।
0: चालीस, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच। और ये जो कॉल लगती है या नहीं लगती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कोई यहाँ पे फेवरेटिज्म बैठ के नहीं चला रही। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को मानो और यकीन करो कि मैं कोई स्पेशल लोगों की कॉल नहीं उठा रही, बल्कि मैं तो ये ट्राई करती हूँ नए लोगों की कॉल लगी। देखें अब तो फिर मतलब के जो लोग डेली कॉल करेंगे उनकी कॉल भी मैंने जो है ना लिमिटेड कर दी है, मतलब वो 3 दिन के बाद कॉल करेंगे। तो ये कुछ ऐसा रूल है, कुछ ऐसा सीन है। तो अब ये कॉल नहीं लग रही, और लग रही है तो ये हो रहा है, तो अब इसका क्या किया जाए मुझे बताए ना। मतलब कॉल नहीं लग रही तो मैं कैसे आपकी आके कॉल लगाऊं, कोई यहाँ से जादू कर दूं, कोई रेडियो के टावर में कोई ऐसी स्पेशल सेटिंग कर दूं कि आपकी कॉल लग जाए, क्या किया जाए। चलिए खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, कुछ ज्यादा लंबा हो गया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम, अस्सलाम शमा किशोर, क्या हाल चाल?
2: शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए?
0: मेरे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि टंग ट्विस्टर बोलने आए या गाना सुनाने आए?
2: शिकायत करने आए।
0: शिकायत आपकी भी शिकायत है?
2: आपकी भी, मतलब और किसी भी?
0: सॉरी,
2: मैंने कहा आप और किसी ने इतनी शिकायत?
0: हाँ अभी देखें, अभी जो लास्ट कॉल गई है ना, उन्होंने भी इतनी मतलब वो जब भी आते हैं वो शिकायत ही करते हैं, और अभी भी वो शिकायत ही करके गए। और बहुत सारे कॉलर्स की शिकायत ये होती है कि हमारी कॉल तो लगती नहीं है और आप उठाती भी नहीं है।
2: नहीं, शिकायत वो करनी चाहिए,
0: शिकायत करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी शिकायत के जिसकी लॉजिक भी आपको पता हो, और फिर वो आप बार बार शिकायत करें ना, तो फिर ये बनती नहीं है।
2: अच्छा तो मेरी शिकायत
0: मैं क्या करूं?
2: मैंने कहा मेरी शिकायत सुनिए।
0: हाँ जी सुनाए सुनाए, मैं बिल्कुल शिकायत सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ आप सब लोगों की।
2: अच्छा आपको पता है आपका शो कहीं लाइव चल रहा है?
0: हाँ कहाँ
2: चल रहा है?
0: कहीं लाइव चल रहा है? नहीं, लाइव ये रेडियो पे चल रहा है, और कोई फेसबुक पे स्ट्रीमिंग नहीं है। हाँ पोस्ट है वहाँ पे रहे।
2: नहीं चल रहा, जैसे लालकान भी आपकी आवाज आ रही है तो कभी फोन चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
0: अच्छा, और सखर स्ट्रीमिंग भी नहीं चल रही है?
2: सखर तो नहीं चल रही, कल भी नहीं चल रही है, आपको पोस्ट पे बताते हैं, आप वो तवज्जो नहीं देती।
0: चले ये हम देखते हैं कि क्यों नहीं चल रही, बिल्कुल आप बताया करें। और
2: आप ये भी रेगुलर लिस्टनर हैं, आपके आपके शो में क्यों नहीं आ रहे, वजह होगी ना कोई?
0: یہ واقعی پوائنٹ کی بات کریں, واقعی ایگری کرتی ہوں اس بات سے. اگر تو کوئی ایشو ہے
2: آپ کو بتائیں, ہم جو ہے نا جو سن کر ہی آپ کے شو میں شامل ہوتے ہیں, ورنہ ایسے خام کار جو سنتے ہیں آگے بہت پہنچ جائیں, کیا پتا کیا ٹاپک ہے کیا سوال ہے.
0: چلیے میں بالکل اس کو دیکھتی ہوں کہ یا اور اسٹیشنز پہ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہا ٹائملی, ہم اس کو ٹائملی بھی کنیکٹ کرواتے ہیں اور اسٹریمنگز پہ بھی جو ہے نا صحیح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا
2: ہوتا ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے چلا جائے, لیکن جب کمنٹ آپ کرتی ہے وہ کمنٹ نہیں آتے, کوئی کالر آتا وہ نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا شو چل رہا ہے یا کچھ اور.
0: چلے جی تھینک یو سو مچ فار یور کمنٹ, کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور دیکھیے کمرشل بریک ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا, سو ہم کمرشل بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں کمرشل بریک کے ساتھ, اینڈ دین پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے

0: GS。
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ओके जी, और मैं कोशिश करूंगी, मैं लास्ट में एक और कॉलर ले लूं, लास्ट टाइम की कॉलर. हेलो हेलो, कोई है? ओके जी, कोई नहीं है. मेरे ख्याल से हैंडफ्री सेट हो रही थी या फोन का स्पीकर खोला जा रहा था. खैर, नेक्स्ट कॉलर, एक और ट्राई. हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरदार, क्या हाल चाल? मैं बहुत अच्छी हूँ. आज की अच्छी बात बता दो जल्दी से.
1: नहीं सुना सकते
0: हैं? नहीं, टाइम लिमिटेड है और हम जा रहे हैं बाय बाय करके.
1: ये अच्छी अच्छी बात, जब भी वक्त मिले उनसे खुशी से जिया लिया करो, क्योंकि नोट करते हैं याद ही आती है वक्त में.
0: ओके, वेरी नाइस, थैंक यू. कुछ और कहना है?
1: Nothing.
0: Thank you so much. So sweet. So there. Isi ke saath.

0: अब आप सुनेंगे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
5: तब्दील करना पड़ा।
6: अमेरिका ईरान खिलाफ़ नई मुआशी पाबंदी जो ऐलान कर छो। ईरान से माली रबता रखंदड़ मुल्कन के भी निशानो बनाने की धमकी। अमेरिकी

0: वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राबता ख़त्म करे छॾींदो। अमेरिकी दफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंद नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियारबंद कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। आबना हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। लंग मां तेल जी रसबेज जारी आहे।
1: अमरीका पासदारनि इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम रखण जो ऐलान। फ़हिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अब्दुल अई, अहमद रज़ा ऐं ॿियनि जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आकाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम।
0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परॾेही वज़ीर खाकान फेकदान सां फोन ते राबितो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि रीजनल फोर जे एंड इजलास बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। ॿिन्ही अॻवाणनि मौजूदा सूरतहाल ते राबतनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
1: सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानीअ जे इलाज बाबति दाख़िल तोहीन अदालत जी तरफ़ां एतिराज़ लॻाए वापसि करे छॾी। तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते इल्ज़ाम वाज़े करण जी हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौर तस्दीक कंदे चयो आहे त एतिराज़ ख़तम करे अॼु ई दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पाण सां मुलाक़ात ज़रूरी आहे।

0: छा अदालत जी आईटी जोड़ने लाइ सीधी रीत हुकुम जारी करे सघे थी। छा अदालत जांच ऐं रिपोर्ट जमा करण वारे अमल तब्दील या निगरानी करे सघे थी। सिंध हाई कोर्ट मीर रज़ा केस बाबति लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत हुकुम में चयो आहे त सिंध ट्रिब्यूनल इंक्वायरी आर्डिनेंस 1969 तहत गज़ेट नोटिफिकेशन खां सवाइ मुदाख़लत जो केस ठहे थो। सिंध हाई कोर्ट एजी सिंध ऐं डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत धुरियुनि खे मुआमलत लाइ नोटिस जारी करे छॾिया।
1: जेका बाद जे सुई गैस ऑफिस भरिसां हथियारबंदनि जी कार ते फायरिंग, नौजवान कतल नामालूम जवाबदार कार में सवार थी हक भाऊ पाड़ेवासी अख्तर अली चांडे खे गोलियो कतल करे छॾियो। लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बदमाशनि हवाले कयो। पुलिस चयो आहे त वाके जी जांच करे रहिया आहियूं।
0: खैरपुर भरिसां फोरम मज़ामत ते कतल थियल इंजीनियर फैसल गुलज़ार भुट्टो जे वारसनि जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ धरणो। मक़तूल इंजीनियर जे वारिस औरतनि ऐं मर्दनि शाह हुसैन बाईपास ते धरणो हयो। मुज़ाहिरीन चयो आहे त फैसल गुलज़ार भुट्टो खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।

0: अठहठ मोरी भरसा सीआई पुलिस नवाबशाह पारा अठन जणन के कमंदे फसल में ना कैद कर हथ कड़ी उन्हीं लिकायण जो इंकशाफ। कैद कल अठन जणन के कमंद के फसल में कैद कर रखणवारा फुटेज केटीए न्यूज हथ कर वरता। पुलिस कैद में मौजूद शहरन मूजिब खेन रात का कमंद फसल में रखियो है, डूह की खबर ना।
1: झंडो मरी वेझो मैट्रिक के शागिर्द जो गोलियों लगल लाश हथ गोट रजाक मगर वासी 17 वरन जो मोहम्मद उर्स पुट मोहम्मद सुमार मगर जो लाश मिलो। वारसन जो चवण है तो फुटन के फसल से चौकी रही रहा हुआसी। नौजवान इतफाकी गोली लगन सबब फौत हुआ है। पुलिस मौजूद वधिक जांच कर रहा है।
0: सकरण वेझो मैट्रिक के शागिर्द पान मथा फायर कर मुबैना तौर आपघात कर छो। गोठ मोहम्मद खान मक्सी में 15 वर्ष जो मेहरानी मक्सी जिंदगी जो अंतो। वाके जो इतला मिलने बाद रेस्क्यू टीम नौजवान जो लाश ताल के अस्पताल सकरण आंदो, जिते नीकर जी वालद चवण आए तो पुट ओचितो पान मथा बंदूक जो फायर कर आपघात कयो आए।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नेमत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असाज माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बेहतर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: पावरफुल वेपन क्या होता है, यानी कि हिकड़े मानू जो सब का पावरफुल हथियार केड़ो आए जेको हु यूज करे पांजी जिंदगी में तो हु शायद कामयाब थी सके। तो उन जो दिमाग आहे, उन जो जबान आहे, या वरी उन जो सबर आहे। ओके दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब मुझे बताने वाले हैं और मुझे ज्वाइन करने वाले हैं। 888 पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लिस्ट में हैं जो कि हम जाहिर सी बात है आप लोगों को सुनाएंगे और आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो हमें ज्वाइन करते ना, उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि भाई जान प्रोग्राम में जब आप मुझे ज्वाइन करें तो टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें, क्योंकि जब लोग आप टॉपिक को फॉलो करते हैं तब यकीन होता है कि भाई जान टॉपिक को फॉलो करने वाले लोग कितने ज्यादा है। वैसे तो बहुत से लोग मैसेज कर देते, बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया, लेकिन जब आप मैसेज कर ही रहे हैं तो टॉपिक को भी फॉलो कर लिया करें, ये अच्छी बात होती है। ओके जी, तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जाने पाएंगे।

जनाब, तो जी बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए गाना भी मौजूद है। मैं सोच रही थी कि पहले हम ऐसा करते हैं कि गाना लगा लेते हैं, पहले हम गाना लगा लेते हैं और गाना सुनते सुनते आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे। ठीक हो गया, तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना लिस्ट में सेट कर दिया है। ये गाना आप दोनों के साथ हम सुनेंगे, आप सब लोगों के साथ सुनेंगे, बल्कि दोनों के साथ ही गया। तो गाना एंजॉय कीजिए और मुझे बताएं आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार क्या होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका

हवा के जैसे हो गए, कुछ बातें ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, और प्यार भी उन्हीं बातों में एक ऐसा, यानी कि जब प्यार हो जाता है तो इंसानों को कुछ भी समझ नहीं आता, तो बिल्कुल वैसे ही प्यार वो बला है जो समझ ही नहीं आए। ओके जी, तो जाना इंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने पाते हैं। तो चाचा खालिद हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की आयो, खुश आयो? हाँ जी बिल्कुल खुश आया, ताम बताया की आयो, ठीक ठाक आयो? एरम कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त। हाँ जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और दादू खां इमदाद जतोई है, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्लाह जतोई, आप सब मिलकर हमारा प्रोग्राम एंजॉय करेंगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली हमारे साथ है, मोरो सिटी से कहते हैं, लाड़काना की कुंज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहे सिस्टर सिद्रा, कुंजा शायद बबर का गाना तो सुनाना, हाजिर साईं हाजिर, तांजो फरमाइशूं हलाईंदासी, न हलाईंदासी त गाने वेंदासी, बिल्कुल तांखे प्यारो सोनो शायद बबर जो गानो ॿुधाईंदासीं। उनखां अलावा हमारे साथ ही चाचा खाले दोबारा कहते हैं, बेटा सिडो अॼु बि सॉन्ग जी रिक्वेस्ट आहे, तव्हां गानो लिखियो आहे, ठीकु आहे, इहो गानो हलाए वठूं था तव्हांजे लाइ, ऐं मोहबतूं आहिनि, तव्हां सभु असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया, टॉपिक खे फॉलो कयो था कोन? कयो बाबा कयो, टॉपिक खे फॉलो कंदा कयो। उनखां अलावा जेके माण्हू असांखे हाणे हाणे जॉइन कंदा वञनि पिया, उन्हनि खे चऊं था भली करे आया, तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे। ऐं सवाल तव्हां खां इहो पुछियो आहे, हिकिड़ी माण्हूअ जो सभ खां पावरफुल हथियार कहिड़ो हूंदो आहे हिक इंसान जो, हुन जो दिमाग़ हूंदो आहे, हुन जी ज़बान हूंदी आहे, या वरी हुन जो सबर हूंदो आहे? अक्सर ईंदो आहे कुझु माण्हू जी ज़बान एतिरी त ख़तरनाक हूंदी आहे, माण्हू हुन खां थोरो पासो कंदा आहिनि, ऐं पासो इन वजह सां न आहिनि कंदा त हू माण्हू हुन खां डिॼंदा आहिनि, बल्कि इन वजह सां कंदा आहिनि छो त कई मरतबा तव्हां ॾिठो हूंदो त कई माण्हू जी ज़बान सां बि थोरो सारे माण्हुनि जो नुक़सान थींदो आहे, ऐं कुझु माण्हू जो वरी दिमाग़ बि अहिड़ो हूंदो आहे, कुझु माण्हुनि जो दिमाग़ एॾो शातिर हूंदो आहे जो हुन जे दिमाग़ ऐं चालाकियुनि जी वजह सां थोरो सारे माण्हू जूं ज़िंदगियूं ख़राब थी वेंदियूं आहिनि। ऐं हा, सबर वरी उहो हथियार आहे जेको अगरि माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी में एड करे थो त पोइ बाबा ॿेड़ो ई पार आहे। त तव्हां ॿुधायो, तव्हांखे छा थो लॻे, हिकु इंसान जो सभ खां पावरफुल हथियार कहिड़ो थी सघे?

ओके जी, कितना प्यारा गाना है, सुन रहे हैं ना? बिल्कुल जी, सुनिए, आप लोगों के लिए लगाया मैंने लिस्ट में। यहाँ पर हमारे साथ हैं जी महबूब अली मोरो सिटी से, कहते हैं सिस्टर इंसान का सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार उसका सब्र होता है। ओके ओके। सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूनी जो हमारे साथ, कहते हैं सलाम सिद्रा मुस्कान, वालेकुम असलाम, कहते हैं शो नाइस है, जवाब सब्र सब्र जिनजो सेर तिर तीर न घुसे तिनजो। सही सही, ॾाढो वीआईपी तव्हांजो मैसेज। ऐं उन खां अलावा हीअ जी हमारे साथ चाचा ख़ालिद कहते हैं सब्र और शुक्र ऐसा हथियार है जो इंसान को कभी भी झुकने नहीं देता सिवाय एक अल्लाह पाक है। ये टॉपिक आंसर। ओके नाइस। अच्छा, ये हमारे साथ ही दिल रुबा कहती है फ्रॉम नौशेरो फिरोज, हाय आप जान कैसी है, नाइस शो, मास्टर मंजूर तो प्ले करना, हाजिर हाजिर, सभी जो फरमाइशों हलायूं था कोई भी न रह जो। उन खां अलावा हमारे साथ हैं जी ये हेलो आपी, कैसी हैं आप, टॉपिक का जवाब है सब्र करो अल्लाह कामयाब कर देता है। सितारा हमारे साथ है, सितारा क्या कहती है, आप मेरी फरमाइश पूरी नहीं करती है, फरमाइश आपका अहमद बुगल का गाना लगाएंगे जी आज, आप टेंशन क्यों लेते हैं। ओके, सितारा को वेलकम इन, खुश आमदीद कहा जाता है। दादू का फारूक हैदर जतोई हमारे साथ कहते सब्र पर गानो बुधायो मास्टर मंजूर जो। ओके, तमाम गानो लिखियो आए, ठीक है, मैं कोशिश कयां थी तव्हांजे पसंद जो गानो हलाईंदासीं, न त मास्टर मंजूर जो कोई भी भलो भलो गानो हलाए छॾींदासीं, ठीक आहे। सो थैंक यू तव्हां सां सगॾु आहियो।

जरूर की क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि जाहिर सी बात है हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं, ये होने वाला है जी राहत फतेह अली खान साहब की आवाज। बहुत ही प्यारा गाना हम साथ सुनेंगे और आप अभी जान करते जा रहे हैं बिल्कुल जी आपके मैसेजेस और उनखा अलावा टॉपिक ही तमाम फॉलो कर दो वन पाया टॉपिक मोहन जमा का पुछो है तो एक इंसान जो सब खां पावरफुल हथियार कहो थी सके तो उन दिमाग उन जबान या वरी नजो सबर पर यह गाल भी बिल्कुल सही दिमाग होंद उनके खबर पवी सब चीजन जी सही है गलत है पर अगर दिमाग न होंद वरी उनकी यह भी खबर न होंगी तो जबान के किथे कड़ी तरीके से यूज करो है तो यो भी सही ना है अगर ये भी ना है तो बस इंसान हर चीज

ओके सही है जी। तो वेलकम कहते हैं आपको भी खुश आमदी और ऐसे सुनते रहिए प्रोग्राम, शामले प्रोग्राम होते जाइए। यहाँ पर ये प्यारे सा गाना एंजॉय कीजिए। गाने के बाद हम जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं। तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। पूरे पूरे 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि हम आपके साथ मौजूद रह रहे हैं। तो यूं जाकर यूं वापस आ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। 88.8 पर आप सुन रहे हैं इस चलती का।

0: यू तो है मशहूर मासूम।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Analgesic Cream. दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर।
8: अमेरिका पासदारन इंकलाब जे सीनियर अहदेदारन जे जान देण ते 1 करोड़ डॉलर तई इनाम जो ऐलान। फरस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्द वहीद, अहमद रज़ा जा ए बिया नाला शामिल आन। अमेरिका सा जंग दौरान शहीद थियल सईद अकानी ए मजीद खादमिया नाला भी शामिल। ईरानी अहदेदारन ते अमरीकी फौजन ए अडन ते हमलन जो इल्ज़ाम।
9: नायब वजीर आजम सबदार जो तुर्किया के परे वजीर हाकान फुगदान से फोन ते राबो बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल परे खाते मौजूद बिन्हीं अगवान रीजनल फोरम के ईंदड़ इजलास बाबत भी ख्याल की डेवत कई वही। बिन्हीं अगवान मौजूदा सूरत हाल से राबतन में रहने से भी इतफाक कयो।
8: वजीर आजम समेत कैंप खिलाफ बेतमादी रिथ आन अपोजिशन जो हक है रोके न तो सके वक्त अचण से डिठो वेंदो। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक कोरम पूरो करण स्पीकर न पर हुकूमत ए अपोजिशन जिम्मेवारी है। अज इजलास में बेहतरी आई है सुभाणे वधीक ईंदी। कानून साजी बाबत अपोजिशन जो इताअत थियण सुठी गाल है। कमेटी तां पीटीआई जो डिनल इस्तीफाओं कबूल नायन कयूं गालन की दावत डई थकी पिया आयो। हाँ अपोजिशन अगते वी तो असा भी बदलासी।

0: अठहठ मोरी भरसा सीआई पुलिस नवाबशाह पारां अठ जणन के कम जे फसल में नाह कैद करे हथकड़ियूं हणी लिकाइण जो इंकशाफ। कैद कयल अठ जणन के कम जे फसल में कैद करे रखण वारा फोटेज केटीएन न्यूज हथ करे वरता। पुलिस कैद में मौजूद शहरीन मूजिब खे रात खां कम जे फसल में रखियो वियो आहे, ॾोह जी ख़बर नाहे।
1: लाड़काणे में खानगी स्कूल के प्रिंसिपल के कत्ल खिलाफ़ शागिर्दन की रैली ए धरणो। नजीबुल्ला अख़बार के कत्ल खिलाफ़ संदस वासन ए शागिर्दन एहतजाज रैली कड़ी धरणो आयो। वासन जो चवण आए तो 7 अगस्त से मिसवादीन खुआवरो बिलावल एजाज जतोई एन नजीबुल्ला के कत्ल कयो। वाके जो केस दड़ी थाने ते दाखिल कयो वियो आहे, पर पुलिस कत्ल में मुलविस जवाबदार गिरफ्तार नाहे करे सघी। मिसवादीन खुआवरे नजीबुल्ला खां 1.5 करोड़ भतो घुरी रहियो आहे। पतो न ॾिण तां हिननि कतल कयो आहे।
0: ऐं झंडो मरी वेझो मैट्रिक जे शागिर्द जो गोली लॻल लाश हथ आयो आहे। गोर रज़ाक मंगरो वासी 17 वरनि जो मोहम्मद उर्स पुट मोहम्मद सुमार मंगरे जो लाश मिलियो आहे। वारसनि जो चवण आहे त फुटनि जे फसल ते चौकी ॾेई रहिया हुआसीं त नौजवान तपाकी गोली लॻण सबबि फोत थियो आहे। पुलिस मौजूदु वधीक जांच करे रहिया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अक्सर मान जो सवाल होंगे असा सही पोलियो की वैक्सीन दह साल तोथी डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो दह साल घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: जी हां की आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते का नाम वर्सी। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ मौजूद है जनाब प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं जो लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुना स्टार्ट किया होगा उनको वेलकम करने के साथ साथ ये बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल जो पूछ लिया है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप हमें मैसेज करें शामिल प्रोग्राम हो जाए तो आप लोग टॉपिक को भी लाजमी फॉलो कर लें। तो आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं कि एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार कौन सा होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र। तो अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं तो आप हमें 888-1 पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के अलावा जिनको नहीं मालूम कि हम कैसे पैनल पर मैसेज करेंगे तो ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। ये तरीकेकार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर सुन सकते हैं यानी कि बहुत से लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद होते हैं फेसबुक पर हमारा शो सुनते हैं। जहां जहां पर हमारा शो नहीं चलता रेडियो के थ्रू तो आप हमें फेसबुक पर ईजीली सुन सकते हैं। तो पोस्ट को जो है वो लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि बहुत सारे लोगों को हमारा प्रोग्राम जो है वो पहुंच सके और वो भी हमारा प्रोग्राम सुन सके। और इसी के साथ साथ आप लोगों के पसंद के गाने जो है वो लिस्ट में सेट होते हैं जो कि आप लोगों की चॉइस के ऊपर होते हैं। कुछ आप लोगों की पसंद होती है कुछ हमारी पसंद होती है कुल मिलाकर आप लोगों के ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। ओके सर बिल्कुल आपकी पसंद के गाने सुनेंगे।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने यहाँ पर एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ गानों की फरमाइशें भाई आप लोगों की मैंने लिस्ट में लगा ली है, क्योंकि आप लोगों की जब च्वाइस प्ले नहीं होती तो आप थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, तो आपकी नाराजगियाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि मनाना तो आता नहीं है हमें। चले जी, ये सितारा की च्वाइस के ऊपर हमने लगाया है अहमद मुगल का गाना, तो सितारा भी बाबा हथनमा बनी भाई गानों सितारा के डेडिकेट आए। अच्छा तो मिल जी करें, एंजॉय।

0: It's 2:30 PM. It's 2:30 PM. This sound check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम
2: जिसकी तामीर पर होती है वाह वाह
3: मजार है वो मीर मासूम शाह का
2: शहर पर करता है राज
3: निराला है सक्कर बैराज अयूब गज भी एक शाहकार है
2: अलग ही यहाँ का शाही बाजार है
3: रंग बिरंगे हैं सक्कर के अंदाज
2: जिनकी है बस एक ही आवाज
3: जीए सक्कर FM 88
2: सक्कर की आवाज जीए FM 88
3: सिंध की आवाज
4: जीए FM 88
3: सिंध की आवाज
5: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर ही के अहली जाए थे ठहरन चाहे था जिते हो जाए तहफुज जदी सहूलतों आई मंजूर थेल सिक्योरिटी
6: तपोई भले कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
5: सखर शिकारपुर रोड ते
6: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामने
5: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थेल
6: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
5: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
6: रिहायशी प्लॉट 80-120-150 आई बसो गजरा
5: आई कारोबारी मौके कमर्शियल प्लॉट 50 गज़ 600 गज़
6: इतने तरह की मिलन थी जदीद सहूलतों
5: साफ मिठो पानी
6: बिजली गैस
5: 24 कलाक सिक्योरिटी
6: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सब

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली

नमस्कार जनाब, मेहरापुर और साथ साथ लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ जितने भी प्यारे प्यारे लोग मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, और जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर मेरे साथ मौजूद है, सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना सुन रहे हैं जो कि सगशा की आवाज में है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल जी आपके मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि हमारे मैसेजेस कब शामिल प्रोग्राम किए जाएंगे। तो बिल्कुल जी अभी किए जाएंगे, तो जितने लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद। अच्छा तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जी अनीस अली चन्ना, चनेसर हुसैन बलोच, गुलन माँ खुशबू पर गुलाब न मिलियो, पिरन के चाहियो हकीकत खिताब सो खिताब न मिलियो, ऐं चौथा टॉपिक जवाब हकीकत में हथियार सब खां तेज अखियूं हूंदियूं आहिनि। अखियूं सही सही अवेश चन्ना में सुन रहे हैं जी, आपने लास्ट में ये लिख दिया है, सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा हमारे साथ ही हाय बाजी, कैसी हैं आप, आई एम राबिया फ्रॉम हाजन शाह। ओके राबिया हमें सुन रही हैं हाजन शाह से, राबिया आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है स्वीटी। और जी गुलाम फातिमा हमें सुन रही हैं, गुलाम फातिमा हमें सखर से सुन रही हैं, तो प्यारी छोटी गुलाम फातिमा को दिल से वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। रोज आप हमारा शो बड़े शौक से सुनती हैं गुलाम फातिमा, थैंक यू। ओके जी मीरपुर खास अब्दुल्ला बहर हमारे साथ, सलाम बाजी टॉपिक दिमाग और सॉन्ग सुनाओ शाहिद बब्बर का, थैंक यू। शाहिद बब्बर तो गाना गाकर चले भी गए, आपने सुना होगा। और ये हमारे साथ हैप्पी हैप्पी फाइजा, वालेकुम अस्सलाम सिडो जानी क्या हाल है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मिस मी आर नॉट, यस आपको बहुत मिस किया कहती है, बट आई मिस यू मोर माई क्यूट आरजे, थैंक यू वेरी मच हैप्पी फाइजा। और कहती है घर से कुछ सामान लेने आई थी तो सोचा आपसे मिलती हुई जाऊँ, बस गांव जाऊंगी, हमारे यहाँ तीन शादियां हैं, माँ तो फुल मजे में, आप फुल मजा कहो बाबा फुल मजा कहो। इरम कहती हैं दिलबर आप ही जवाब, अच्छा क्या देती हैं जवाब, सबर। और प्लीज प्ले रऊफ मक्सी का गाना, मैं कोशिश कयां थी गानो टाइम बची हुई हलाए तो नत असा पंज बजे वाले प्रोग्राम में बुधंदासीं, ठीक है। अच्छा ये हमारे साथ गोठ पाबू वीरो थर पार्कर से दिलीप कुमार मेघवाल, नवल राय मेघवाल, दानिश कुमार, ओके इतरो तांजो मैसेज आ लगी तो अगे ते मिसिंग पार्ट थी वयो आहे, वरी बियो तां मैसेज कराया जवाब डिनो आ तवां, जवाब वारो मैसेज भी तां थोड़ो मिसिंग पार्ट थी वयो आहे। सो थैंक यू सो मच तवां से गड मौजूद आहे, तांजो मोहब्बतूं आहिनि बाबा, प्रोग्राम में तवां जॉइन कंदा आहियो। चाचा खालिद कहते हैं कि खुश रहने के लिए अपनी जिंदगी से जहरीले लोगों को निकाल दें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उनका अलावा बियर मैसेज किया, चाचा कहते हैं मनाना भी आपको आता है बेटा, सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, क्या क्या सीखूंगी मैं। अच्छा ये हमारे साथ हैं बाजी, मुझे एक सॉन्ग तो सुनाएं तेरे बिन ड्रामे का प्लीज, राबिया हमारे साथ है। ओके ओके राबिया आपकी पसंद का गाना बिल्कुल लिस्ट में है, आप लाजमी इंजॉय करेंगे।

0: ओके जी सोनो गानों ने सोनन मानन के लिए जी के माशा मंसूर जी गाने जी फरमाइश करता है
1: मुझे बुरे बुरे रंगड़े।
0: अच्छा हमारे साथ दिया परी मौजूद है। दिया परी क्या बात है भाई, आप हमारे साथ पैनल पर मौजूद, कहते कैसी है स्वीटी, सफा भली ताम बताया प्यारी किया है, कहते प्लीज प्लीज सॉन्ग राहत दिल के तार राहत त अच्छे गानों गाए भी वो यो गानों जो का पंच बजे वाले प्रोग्राम में बुधूं था ठीक है। डेडिकेट अली मुर्तजा ओके जी। हमारी प्यारी दिया परी हमारे साथ मौजूद, उनके अलावा मौजूद हैं जी हमारे साथ मोहम्मद जमान भाई, कहते हैं कि जालिम ने कहा आप हमें सॉन्ग नहीं सुनने देती, हम तो आपकी महफिल में आते हैं आपकी मीठी आवाज सुन सके, आपके अंदाज को समझ सके, ऐसी अच्छी बातें शेयर कर सके। बहुत शुक्रिया जी। और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अलैहि सलाम अदर प्यारी मुस्कान मायरा हमारे साथ है, मायरा को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है, थैंक यू आप हमारे साथ।

ओके जी, कितना खूबसूरत गाना है और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है जी। अच्छा, टॉपिक को भी फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्यारे लोग हैं जिनको टॉपिक का पता ही नहीं होगा। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं जरा कि आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार कौन सा होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र।

ओके जी, हमारे साथ हैं झुलरी खां खालिक लाशारी के शो नाइस आहे। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। वाह साई वाह, वाह साई वाह। और हमारे साथ ही हमारी प्यारी हैप्पी फायजा कहती हैं कि सिडू जानी आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी रेडियो मत छोड़कर जाना, आपके बगैर जिंदगी अधूरी है। माई क्यूट आरजे लव यू सो मच, लव यू हजार मच। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। और उनका अलावा असान से प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक जो वो लिस्ट में लगाए छो आए ही वारो गाना बुदना सी राबिया फरमाइश कई हुई। बाकी जिन जी फरमाइश रहिजी वनी थी तो उन्हें का माजरत करी वी, बाकी तो असा पंजी बजे वाले प्रोग्राम में तवा जी रह लगाना वो हलए वी। ठीक है, का टेंशन ही ना है बाबा, दिल जाए गयो, दिल वनी गयो।

अच्छा चाचा खालिद खे हिते ही मुंह कहिड़ो डो कयो तव्हांजो गानो थोरो ईअं हो त हुन जी साउंड क्वालिटी थोरी ठीक न करे मुंह कोन हलायो बाकी कोई ॿियो गानो तव्हांजी पसंदि जो ॿुधी वठंदासीं और दिया कहती है सबर टॉपिक अच्छा टॉपिक का जवाब सबर देती है और कहती है नहीं नहीं इशू कोई नहीं है बस ऑफ कर दिए हैं आप ऐसे ही पैनल पर मैसेज किया करें दिया ठीक है जब जब आपको टाइम मिले और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनी बहुत ही अच्छा लगा और इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है वरी तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाकात थी पई मुंहिंजी पंज बजे वारे प्रोग्राम में सुबुह ॾींहुं बि सारी ना पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था जिना फीडबैक रहिजी विया जिना गाना रहिजी विया सभिनी खां माज़रत कयूं था मोकिलाणी नाहे बाबू सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक

0: सचल की सरमस्त धरती।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 3 PM. This time check is brought to you by
0: फकीरी
2: नीड से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by

0: वज़ीर आज़म समेत कंहिं बि ख़िलाफ़ बेअतमादी रिथाराइण अपोज़ीशन जो हक़ आहे, रोके नथो सघजे, वक़्त अचण ते ॾिठो वेंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज़ सादिक़ चयो आहे त कोरम पूरो करण स्पीकर न पर हुकूमत ऐं अपोज़ीशन जी ज़िमेवारी आहे। अॼु इजलास में बहितरी आई आहे, सुभाणे वधीक ईंदी। कानून साज़ी बाबति अपोज़ीशन जो एतिहाद थियणु सुठी ॻाल्हि आहे। कमेटियुनि तां पीटीआई जूं ॾिनल इस्तीफ़ाऊं क़बूल नाहिनि कयूं, ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई हाणे अपोज़ीशन अॻिते वधंदी त असां बि वधंदासीं।
1: क़ौमी असेंबली में सखर हैदराबाद मोटरवे जे फंडिंग न थियण ते पीपीए जे वफ़ाक़ी हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद। पीपीए जे मेंबर शर्मिला फारूक चयो त 70 अरब रूपियनि जी मनसूबे लाइ रुगो 30 अरब रूपिया टोकन रक़म तौर फराहम कया विया आहिनि। हिक तरफ़ हुकूमत माली गुंजाइश न हुजण जो मौको इख़्तियार करे थी, ॿिए तरफ़ सिंध सां इम्तियाज़ी सलूक कयो पियो वञे। बहावल नगर जे 18.5 किलोमीटर मोटरवे लाइ 19 अरब रूपिया रखिया विया आहिनि। छा इहा सिंध जी आवाम सां नाइंसाफ़ी न आहे?

वले वजीर जी कराची में माइल स्टोन्स सेंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट आमद मुख्तलिफ शोबन जो मुआइनो करे ब्रीफिंग वरती। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत खास माण्हुनि जी तालीम बहाली ऐं बाख़्तियार बणाइण लाइ हर मुमकिन सहकार जारी रखंदी। हर ॿार खे अॻिते वधण जा हिक जहिड़ा मौका मिलण घुर्जनि।

सिंध जे घरु खाते कराची जे नौजवान वापारी मीर रज़ा अली केस जे जांच लाइ अदालती कमीशन जो उनजो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। नोटिफिकेशन मूजिब कमीशन मीर रज़ा अली जे मौत जी असल हक़ीक़तनि ऐं वाके सां लाॻापियल समूर रुखण जो जाइज़ो वठंदी ऐं केस में वधीक जांच या इज़ाफ़ी सबूतनि जी ज़रूरत जो तइन पिण कंदी। अदालती कमीशन पुलिस एमएलओयू या कंहिं बि सरकारी अहलकार जी गफ़लत ऐं फर्ज़नि में कोताहीअ जी पिण जांच कंदी।

तिजोरण लाइ सिधी रीत हुकुम जारी करे सघे थी। छा अदालत जांच ऐं रिपोर्ट जमा कराइण वारे अमल तब्दील या निगरानी करे सघे थी। सिंध हाई कोर्ट मीर रज़ा केस बाबति लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत हुकुम में चयो आहे त सिंध इंक्वायरी आर्डिनेंस 1969 तहत गज़ेट नोटिफिकेशन खां सवाइ मुदाख़लत जो केस ठहे थो। सिंध हाई कोर्ट एजे सिंध ऐं डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत धुरियुनि खे मुआवनत लाइ नोटिस जारी करे छॾिया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: एक मजबूत पाकिस्तान सेहतमंद बच्चे, पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी।

0: का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: आए दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो।
1: सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जे FM की आवाज,
1: जे FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध।

0: तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
1: आप सुन रहे
4: ईरान सां समूरा मुआशी राबता खत्म करे छॾींदो। अमरीकी दिफा वारे वज़ीर पेट हेग सेट चयो त ईरान ते हमला बंद ना हिन कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंद कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। आबनाए हुरमस ते बि अमरीका जो कंट्रोल आहे, लंघ मां तेल जी रसद बि जारी आहे। अमरीका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जी तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़िन पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। चीन पंहिंजनि मफ़ादनि जी दिफ़ा लाइ ज़रूरी क़दम खणंदो। अमरीका पास्तारान इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। पेरिस में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आखाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर जी घरू वज़ीर मोहसन नकवी सां मुलाक़ात, खिते जी मजमूई सूरतहाल समेत ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿेतरफ़न लाॻापन सहकार खे बि हथी ॾियण ते गौर वीचार कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल जी मुस्बत किरदार जी वाखाण कई।

0: धरती माउ आहे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो समाजी वेबसाइट ते बयान बिलावल भुट्टो जरदारी सिंधी में नज़ीर भुट्टो गॾु शेयर कयो
1: आपके खिलाफ भी कोई अदमे इतमाद लाई जा सकती है अपोजिशन की तरफ से
2: देखिए ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदमे इतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: दस्तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जे FM की आवाज,
1: जे FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अमेरिका ईरान सां लागापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़ियन पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। कतर बि ईरान ते अमरीकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिक तरफ़ो क़रार ॾेई छॾियो। कतरी परडे॒ही तर्जुमान चयो त कतर तकरार जे हल लाइ सफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत कंदो रहंदो। अमरीका पासदारान इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। फहिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आखाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजियुनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम आहे।

अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाकात, खिते जी मजमू सूरत हाल ते ॻाल्हियूं, बेतरफ़न लाॻापन सहकार खे हथी ॾियण ते गौर वीचार कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी मुस्बत किरदार जी वाखाण कई। धरती माउ आहे, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधीअ में लिखियल जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जी तस्वीर सां गॾु शेयर कयो।

सिंध जे घरू खाते कराची जे नौजवान वापारी मीर रज़ा केस की जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ने जो नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ो। नोटिफिकेशन मूजिब कमीशन मीर रज़ा की मौत की असुल हकीकत ने वाके से लागापल समूर रुखन जो जायजो वी केस में जांच या इजाफी सबूतन की जरूरत जो तयन पिण कंदी। अदालती कमीशन पुलिस एमएलओ या कें सरकारी अहलकार की गफलत फर्जन में कोताही की पिण जांच कंदी।

0: सिंध में सजा ऐं जज़ा जो तस्वुरु ई न आहे। सुप्रीम कोर्ट क़तल केस में देर ते आईजी सिंध खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। एडवोकेट जनरल सिंध ऐं डीआईजी सखर खे बि पेश थियण जी हिदायत। जस्टिस हाशिम काकर रिमार्क्स ॾींदे चयो त सिंध में जज़ा ऐं सज़ा जो तस्वुरु ई न आहे। सिंध पुलिस पाण माण्हुनि खे बरी कराए रही आहे। पुलिस केस
1: ताईं
0: वीज़न जी सूरत हाल घणी ख़राब आहे।

स्टेट बैंक पारां 10 रुपयनि जो नोट बंदि करण जो ऐलान। 10 रुपयनि जे नोट बदिरां सिको जारी करण जो फ़ैसिलो। स्टेट बैंक जे डेप्टी गवर्नर जी सेनेट कमेटीअ खे आगाही। स्टेट बैंक जे डेप्टी गवर्नर डॉक्टर इनायत हुसैन सेनेट कमेटीअ खे आगाही ॾींदे चयो त हुकूमत खे 10 रुपयनि जो नोट ख़तम करण जी दरख़्वास्त करे छॾी आहे। नोट ते लागत वधण सबबि सिको जारी करण जो फ़ैसिलो कयो। नवां नोट ठहंदा त 10 रुपयनि जो नोट ख़तम थी वेंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
4: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
5: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

0: सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM।

0: पर थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा, नहीं चल सकता।
1: माँ चला के आता हो ना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सॉन्ग नहीं उठाते।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ 20 से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोलर
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: तहजीब व सकाफत से सजी बाज धरती
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
4: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए फितूर, जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

मेरे बाप ने अपनी पहली बेटी का फर्ज निभाने के लिए इनसे कर्जा ले लिया था, जिसके बदले में मेरा रिश्ता करके इनसे सौदा किया गया।

0: से कितनी मोहब्बत करते
1: बे इंतहा।
0: रे गौहर के बारे में क्यों सोच रहे थे?
2: ये लड़की जोया कब से तुम्हारे हवासों पे छा गई है?
3: She makes me happy. जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान महसूस करता हूँ।
4: तुम मर्दों के पास बाहर एक यही एक्सक्यूज क्यों होता है?
5: मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ हालात का मुजरिम हूँ।
0: तुम्हारा नाम क्या है?
6: समीर।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द सिर्फ ड्रीम एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

ही सिंध समेत समूरी मुल्क में जश्न शुरू थी वियो। सरकारी इमारतुनि खे रंग बिरंगी लाइटनि सां सजायो वियो। रहमतुल आलमीन ऐं आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद सलाहु अलैहि वसलम जे जनम ॾिहाड़े जी मुनासिबत सां रैलियूं, हर तरफ़ नातनि ऐं मौलूदनि जी गूंज। नेब लकी सीमेंट फैक्ट्री ऐं लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे आफ़िसरनि ख़िलाफ़ जांच शुरू करे छॾी। नेब कराचीअ जो लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते खे ख़त 2007 खां हिन वक़्त ताईं गडाप तालुके जे देह खॾेजीअ में लकी सीमेंट फैक्ट्रीअ खे अलाट कयल ज़मीन जा तफ़सील तलब। 27 अगस्त ताईं ज़मीननि ऐं अदायगियुनि जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। सिंध में हलंदड़ साल जे 8 महीननि दौरान उड़ीअ जा 8,000 खां वधीक केस रिपोर्ट। 63 ॿारनि जी उड़ीअ विघे फौत थियण जी तस्दीक। सिहत खाते मूजिब सिंध में उड़ीअ जा 8,087 शकी केस रिपोर्ट थिया आहिनि। 3,170 जी तस्दीक थी। सखर में 420, हैदराबाद में 157, घोटकीअ में 195, खैरपुर में 216, कराचीअ में 427 उड़ीअ जा केस रिपोर्ट थिया। खैरपुर में 19, दादूअ में 8 ऐं लाड़काणे में 7 ॿार उड़ी सभु फौत थिया। कराची, सखर ऐं ठठे में 5-5, बदीन ऐं शिकारपुर में 3-3 ॿार उड़ी सभु फौत थिया। मीर रज़ा जे बिज़नेस पार्टनर जे भाउ बे गिरफ़्तारीअ खां अॻु ज़मानत लाइ अदालत सां राब्तो करे वरितो। कराची जी अदालत अब्दुल्ला जी 1 सेप्टेम्बर ताईं अबूरी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। जांच आफ़ीसर ऐं फिरियादीअ खे नोटिस जारी। वकील चयो त अब्दुल्ला मीर रज़ा खे चॉकलेट सप्लाई कंदो हो। जंहिं राति मीर रज़ा घरां निकितो हो, अब्दुल्ला जी उन राति 10:30 वॻे साणस फोन ते ॻाल्हि ॿोल्हि थी हुई। पुलिस दरख़्वास्त गुज़ार खे हिसाए रही आहे। हाई कोर्ट कढण थाने जी हद में वेल महरम दल करण वारे वारसनि जी डॉक्टर नजमा कौसर DHO टंडो अलियार मुक़रर, नोटिफिकेशन जारी। नजमा कौसर ते एंटी करप्शन सिंध पारां 2023 बाबति केस हलंदड़ आहे। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ शागिर्दनि जी एहतजाजी कैंप 33 ॾींहं बि जारी। सियासी समाजी अॻवाननि, वकीलनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि पारां AK जो इज़हार। JST 40% पास उमेदवार शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप ते पहुता। शागिर्दनि जो चवण आहे त CC जे नतीजनि ते संदनि ख़दशा बरक़रार आहिनि। मसइलनि जे हल ताईं एहतजाज जारी रखियो वेंदो। अठहठि मोरी वेझो CIA पुलिस नवाब शाह पारां 8 ॼणनि खे कमनि जे फसल में नाहक क़ैद करे हथ कड़ियूं हणी लिकाइण जो इंकशाफ़। क़ैद कयल 8 ॼणनि खे कमनि जे फसल में क़ैद करे रखण वारा फोटेज KTN न्यूज़ हथ करे वरिता। पुलिस क़ैद में मौजूद शहरनि मूजिब खेनि राति खां कमनि जे फसल में रखियो वियो आहे। ॾोह जी का ख़बर नाहे। मलीर में ॻोठ ड्राहण ऐं ग्रीन बेल्ट ते कब्ज़नि ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो कच्छ 38 अगस्त ते एहतजाज जो ऐलान। दरसाणो छनो में कोठायल कठ में आबादकारनि, ज़मीनदारनि, सियासी समाजी अॻवाननि, सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि ऐं ॻोठाणनि जी शिरकत। अॻवाननि चयो तालीम जे नाले ते कंपनियुनि खे ज़मीन विकिरो करे सदियुनि खां आबाद माण्हुनि खे लॾाइण जी साज़िश कई पई वञे। हू पंहिंजो हक़ वठण ताईं जदोजहद जारी रखंदा।

0: कयो वियो आहे। पहिरीं ॻाल्हि त हुन जी केतिरा दुश्मन ईंदा आहिनि पंहिंजी, हू त टारगेट करे मारियो वियो आहे। पुलिस जाती चए एक्सीडेंट थियो आहे, एक्सीडेंट न आहे थियो, जीतरीअ जी गोली लॻल आहे। ज़ुल्म आहे, तव्हांखे फेर इंक्वायरी खपे, कातिल खे किरदार ताणी पुॼणु खपे।
1: खैरपुर में फुर दौरान मस्जिद अहमद ते कतल थियल इंजीनियर फैसल गुलजार भुट्टो जे वारसन पारा कौमी शाहराह ते हयल धरणो 8 कलाकनि बाद खत्म। डीआईजी सखर नासिर आफ़ताब ऐं एसएसपी खैरपुर अमीर सौद मक्सी धरणे में पहुची मक़तूल जे वारसन सां ॻाल्हियूं कयूं, इंसाफ़ जी ख़ातिरी बाद वारस छॾियो। डीआईजी सखर जो चवण हो त फैसल गुलजार भुट्टो केस जी जांच लाइ ऐं पाण कंदुसि, जेकॾहिं पुलिस जी लापरवाही साबित थी त सख़्त एक्शन थींदो।

पनवाकिल में हफ़्तो अॻु क़तल थियल औरत खे ज़्यादतीअ जो निशानो बणाए मारण जो इंकिशाफ़। हिकु जवाबदार गिरफ़्तार। जमीला कलू जो लाश हिकु हफ़्तो अॻु कमन जे फसल मां मिलियो हो। पुलिस क़तल ऐं ज़्यादती जो केस दाख़िल करे जवाबदार विजय कुमार खे गिरफ़्तार करे वरितो। नईम ऐं सतार बि जवाबदार तौर नामज़द। पुलिस जो चवण आहे त औरत में गाह ज़्यादतीअ जो निशानो बणाइण बाद क़तल कयो। ऐं के एन शाह में आरा मशीन मालिकनि वापारियुनि ऐं पोरेतुनि जो पुलिस जे मुबैना ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। डीसी ऑफिस ॾोहु बच्चा साण करे मरण घड़ी ताईं भुख हड़ताल जो अॻवाणी चयो त पुलिस तंग करे रही आहे। ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त डीसी ऑफिस ॾोहु धरणो हयो वेंदो।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना।
1: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
2: GAFM नेटवर्क
4: 1.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।

0: सजा है अम्मा को छोड़ने की।
1: तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार रही है तुमने? मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी,
2: तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: तरफ मेरी मामू मुझे छोड़कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: ख़दशा ख़तम कयो। पीपुल्स पार्टी जी वफ़द जी क़ौमी असेंबली जे स्पीकर चैम्बर आमन, वफ़ाक़ी वज़ीरनि सां मुलाकात। पीपुल्स पार्टी जी वफ़द में फारूक अचनायक, शेरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ ऐं मुर्तज़ा वहाब शामिल हुआ। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह ऐं क़ानून वारो वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ बि मौजूद। पीपुल्स पार्टी जे ख़दशनि ते गौर वीचार, शेरी रहमान चयो त रुगो कोरम पूरो करण नाहियूं आया, हुकूमत खां कुझु माफ़ आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
2: सच जीत जो आवाज़, जी मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।